सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: जब बच्चे

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अभी

Jimmy, wow.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: दूसरे किसको नहीं देखना, सी फादर, सी ब्रह्मा मदर, दूसरा कड़े न कड़े करेंगे तो सभी, फिर भी
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम,
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आज हिम्मत और उमंग उत्साह सदा कायम रहे, इसी की आवश्यकता है। सभी को जो भी सामने आए उसको हिम्मत उमंग उत्साह से कण की दृष्टि से भी प्राप्त हो। सभी मास्टर दाताओं जो भी आवे कुछ ले जावे, चाहे सने ले जाए चाहे सहयोग ले जाए चाहे मत ले जाए चाहे वो मंग ले जाए, कुछ न कुछ ले जावे, क्योंकि दाता के बच्चे वैसे तो सभी का काम ये है। कभी भी किससे मिलते हो, कोई मिलने आता है खाली हाथ नहीं जाए, चलो दृष्टि का सने ले जाए, कुछ

0: Sabi ki Brahman, jo apne ko Brahma Kumar, Kumari samajhte hai, unko aise hi seva mein busy rehna.
1: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: इस वर्ष की ये लास्ट मीटिंग है, लेकिन दूसरी

कार्य करने। एक तो अपने सेवा स्थान को सदा

विशेष कमजोरी हो। आप तो जानते हो ना अपने कमजोरी को। वो कमजोरी

sig. Fjerdet sank alle på. Sig gråd. Chota-chota gråd vi. जैसे हाथ उठाने में एवा रेडी हो गए ना, ऐसे ही त्याग करने में भी एवा रेडी season. कौन सी सभा होगी? नर्विगेन पाप के दिल पसंद पसंद।

0: पूछा भावना से, टोकने के रूप से नहीं पूछा। शुभ भावना से एक दो की सहयोगी बन, एक दो को आगे बढ़ाने की शुभ भावना से।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
2: जुदा न थे न जुदा रहेंगे, विदा न होंगे न विदा कहेंगे। धरती गगन हो, मधुबन वतन हो, बाबा दादी संग सदा रहेंगे, बाबा दादी संग सदा रहेंगे। याद में बाबा के सदा मगन, ओ दादी आपका यही कथन, ओ दादी आपका यही कथन।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

भी चेक करो ला एंड

Psh, psh.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कोई भी निश्चय पर बात नहीं समझना अच्छा है और अच्छा ही रहेगा। बहुत अच्छा करते आप भी अच्छे बन जाएंगे और ड्रामा की हर सीन भी अच्छी बन जाएगी, क्योंकि आपके अच्छे बनने की वाइब्रेशन कैसी भी सीन हो नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल लेंगी। इतनी शक्ति आप बच्चों में है, सिर्फ यूज करो। शक्तियां बहुत है, समय पर यूज करके देखो तो बहुत अच्छे अच्छे अनुभव करेंगे।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: निकालने की मेहनत

Chapter.

Sí.

Yay, Brahmart.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: मधुबन वाले

ऐसे नहीं, दूसरे प्यारे नहीं है, वो प्यारे है लेकिन मधुबन वालों से एक बात का विशेष प्यार। अवश्य सहज बनाने का एक लिफ्ट है, वो लिफ्ट क्या है, जो भी मधुबन में आते हैं उनकी जैसे खाना बनाने वाले जो भी कोई ड्यूटी करने वाली है, बाप दादा तो कहते हैं, कोई झाड़ू लगाने वाला भी है ना, वो भी भाग्यवान है। क्यों? खुश हो जाते, चाहे खाने बनाने वाला, चाहे कोई भी ड्यूटी वाला, लेकिन मधुबन वालों को जान से मधुबन और

स्पष्ट करने में और शक्तिशाली अनुभव कराने में

0: Katja. Bitte, bitte.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: कोशिश

और पुराने सन

combined red.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा बच्चों को योग में अभ्यास करते हुए देखते हैं। अमृत वेले भी बहुत पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन योग तपस्या तप के रूप में नहीं करते। प्यार से याद जरूर करते हैं, रोहण भी बहुत करते हैं, शक्ति भी लेने का अभ्यास करते हैं, लेकिन याद को इतना पावरफुल नहीं बनाया। जो जो संकल्प करो विदाई तो विदाई हो जाए। योग को योग अग्नि के रूप में कार्य में नहीं लगा, इसलिए योग को पावरफुल बनाओ। एकाग्रता की शक्ति विशेष संस्कार पसंद करने में आवश्यक है। जिस स्वरूप में एकाग्र होने जाओ, जितना समय एकाग्र होने जाओ, ऐसी एकाग्रता संकल्प किया और पसम, इसको कहा जाता है योग अगर समापन। मारने में फिर भी लाश तो रहते है ना, बस होने के बाद नाम निशान खत्म। तो इस वर्ष योग को पावरफुल स्टेज में लाओ। जिस स्वरूप में रहने जाओ, मास्टर सर्वशक्तिमान आर्डर करो, समाप्त करने की शक्ति आपके आर्डर से नहीं माने ये

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Scheiße.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

Jesse.

réfléchir.

Cerquero for me.

क्यों नहीं करता? अंश है तो वंश होके निकल जाता, तो अभी आवश्यकता है शक्ति स्वरूप बनने का आधार है अपने आप को चेक करो कि किसी भी स्वरूप में अंश मात्र भी पुराना देवान का संस्कार प्रशंसा बढ़ेगी।

0: Jesse up. Loco con pervertirme René Baloco. Tristán de Teo. Que sab kuch karte. Karab yogi. कमल पुष्प के समान रहो ऐसे आप सभी को भी सेवा करते साधन मिलते साधना और साधन का बैलेंस
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: वर्तमान समय

Sådär, vi är så nära. Då sådär.

इसके लिए बहुत सहज साधन

0: sello terra. Naya sochna. Naya karna. Uski avashyakta hai nahi. Jo baap ne kiya, wo follow father. Sejna.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

संदेश की शीतल स्वरूप की अनुभूति करेंगे।

शास्त्रधारी।

Kian gengai apa?

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

क्यों कि इस शिवरात्रि पर बाप को कोई सौगात तो देंगे ना, देंगे। हाथ उठाओ। तो बाप दादा यही सौगात चाहते हैं कि व्यर्थ को समाप्त अटेंशन दो, बुराई बुराई के ऊपर तो अटेंशन है, लेकिन व्यर्थ के ऊपर भी अटेंशन देना है। पसंद है ना? पसंद है? हाथ उठाओ। पसंद है तो सब पास हो जाएंगे। पसंद है तो पसंद चीज तो दिल से।

Saturday bus.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: कोई दुख देवे तो आप क्या करेंगे? दुख देंगे? नहीं देंगे। बहुत दुख देवे तो बहुत गाली देवे, बहुत इंसल्ट करे, थोड़ा तो फील करेंगे या नहीं? कुमारियां फील करेंगे थोड़ा। फॉलो फादर, ये सोचो मेरा कर्तव्य क्या है, उसका कर्तव्य देख अपना कर्तव्य नहीं बोलो। वो गाली दे रहा है, आप सहनशील देवी, सहनशील देव बन जाओ। आपकी सहनशील सदा यही समर्थी रखो।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: हाथ तो बहुत सहज उठाते हैं बाबा को पता है, हाथ तो ट्वेल के तो बहुत प्रकार के हाथ उठेंगे, लेकिन फिर भी बाप दादा कहते हैं जिस चीकिंग से आप हाथ उठाने के लिए तैयार है, बाप दादा को पता है कितने तैयार है कौन तैयार है अभी भी और अंतर्मुखी सूक्ष्म चेकिंग करो। अच्छा कोई को दुख नहीं दिया, लेकिन जितना सुख का खाता जमा होना चाहिए उतना हुआ, नाराज नहीं किया, राशि किया, व्यर्थ नहीं सोचा, लेकिन श्रेष्ठ संकल्प व्यर्थ की जगह पर श्रेष्ठ संकल्प इतने ही जमा हुआ, सबके प्रति शुभ भावना रखी, लेकिन शुभ भावना का रिस्पॉन्स मिला वो चाहे बदले नहीं बदले, लेकिन आप उससे

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: जो वारिस होगा उसकी निशानी क्या होगी? एक तो वारिस अर्थात हर श्रीमत पर चलने वाले। बाप ने कहा और बच्चे ने किया। हर कार्य में चाहे मनसा चाहे वाचा चाहे कर्मणा चाहे संबंध संपर्क में फैमिली लाइफ वालों, आने वाला स्टूडेंट नहीं, फैमिली नेचर वालों, फैमिली का अर्थ होता है एक दो के जानना और एक दो को समझकर चलना। परिवार में भी ठीक हो और चार निश्चय जो सुनाए थे, चार ही निश्चय में जो वारिस होगा वो प्रैक्टिकल लाइफ में हो। सारे परिवार का प्यारा होगा, कोई का प्यारा कोई का नहीं, नहीं सारे परिवार का प्यारा। ऐसे वारिस क्वालिटी अभी वो चाहिए, पिर्चा तो बनती जाएगी, साधारण पिर्चा, लेकिन अभी नस्तीक वाले वारिस क्वालिटी बना।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा सदा कहते हैं कि फॉरेनर्स इस जन्म के फॉरेनर्स है, लेकिन अनेक जन्म के ब्राह्मण परिवार के हैं। अगर आप लोग विदेशी नहीं बनते तो विदेश के बिना बिना देशों की सेवा कैसे होती। अगर आप विदेश के रूप में नहीं आते तो बाप दादा को सब देशों की भाषा का यहाँ क्लास रखने पड़ते, तैयार करने पड़ते। तो आप लोग जो बिना बिना देश में गए हो वो सेवा के प्रति गए, समझा? समझ में आया क्यों गए हो? ओरिजिनल आप ब्राह्मण आत्माएं, विदेशी आत्माएं नहीं। बिना बिना विश्व की सेवा के लिए देखो, भारत में भी हर भाषा के बच्चे आए हैं और सेवा कर रहे हैं। नहीं तो पहले एक ही ग्रुप था, सिंध का ग्रुप, और धीरे धीरे बिना बिना देश का, चाहे भारत के चाहे विदेश के, आते रहे और पढ़ते रहे। ये भी ड्रामा में बना हुआ खेल है। वैसे भी पहले जड़ में थोड़ी होती है, फिर धीरे धीरे तना और शाखें निकलती, तो फाउंडेशन बना सिंध के देश के निमित्त, फिर धीरे धीरे फिर क्या बढ़ता गया। भाषाएं और देश की शाखाएं, आप शाखाओं में नहीं हो, आप तो बाप के साथ।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा ने देखा है कि जो भी विंग्स है, चाहे ट्रांसपोर्ट का है, चाहे धार्मिक है, लेकिन जब प्रोग्राम करते हैं, कनेक्शन में आते हैं, उनसे लगातार कनेक्शन में रखते रहे, वो नहीं होता है। जब फिर प्रोग्राम होगा तब पत्र भेजेंगे, निमंत्रण भेजेंगे, फिर से आओ, लेकिन समय पर तो समय बाप दादा ने एक फॉरेन का समाचार सुना है कि एक लव टाइम्स का जो प्रोग्राम करते हैं उसमें लगातार हर सप्ताह जो भी आते हैं और अच्छा लगता है, जिज्ञासा उठती है, कनेक्शन होता है, लेकिन पक्के रिलेशन में लाने के लिए उनकी पीठ नहीं करते। 6 साल के बाद वो याद आ गया तो आ गया, कनेक्शन हो गया तो हो गया, लेकिन हर एक की एड्रेस पर उनको कुछ न कुछ सप्ताह में बेचना चाहिए, जिससे उनकी पालना होती रहे। बिना पालना के फिर कभी नहीं भरा होता। सिर्फ प्रोग्राम नहीं, प्रोग्रेस भी उनकी करानी चाहिए। नस्तिक आते जाए और रिजल्ट अपने पास रहो। इस वर्ष में कितने नजदीक रिलेशन में आए, समझा सुना।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: मनसा से भी आत्माओं को आकर्षित कर आगे बढ़ा सकते, संबंध संपर्क मिला सकते। मनसा की सेवा अभी कम है, लेकिन अभी से शुरू करेंगे तो अंत में कोई रह नहीं जाएगा। कभी भी अगर फुर्सत
0: सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम,
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बच्चों

परिवर्तन का कार्य नहीं करना है, बच्चों के साथ साथ करना, ये अलौकिक साथ रहने का प्यार साथी बनने का प्यार इस संगम बड़ी अनुभव करते बाप और बच्चों का इतना गहरा प्यार जन्म भी साथ है और रहते भी कहाँ हो अकेले या साथ में हर एक बच्चा

सात जन्म है, सात रहती है, और आगे भी क्या वैदा है। सात है, सात रहेंगे, सात चल

0: Ciao.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अच्छा लगता है वो मंग है, लेकिन बातें छोटी छोटी बातें रुकावट डालती अभी इसको मिटाने की कोशिश करूं। सोचते भी हो आगे से नहीं होगा, लेकिन फिर भी हो जाती। अभी तक के रिजल्ट में जो सोचते इतना अच्छा उठाते हैं जो बाप दादा खुश हो जाते हैं। अच्छा है तो बाप दादा साथ है तो हाथ भी साथ है।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अगर बाप समझ के कनेक्शन जोड़ा तो एक दिन में भी वर्षा ले सकता। अच्छा है, कोई शक्ति है, समझ में तो आता है, ऐसा नहीं। वर्षे के अधिकारी बच्चे होते हैं, समझने वाले देखने वाले नहीं। अगर एक दिन में भी पाप माना दिल से तो वर्षे के अधिकारी बन सकते।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
2: आपके सत्कर्मों की राहों पे हम चलते जाएंगे, आपके सत्कर्मों की राहों पे हम चलते जाएंगे, जब तक स्वर्णिम सवेरा आए, दीपक बन जलते जाएंगे, दीपक बन जलते जाएंगे। हम जानते हैं आज भी कर रही हो यही रमण, हम जानते हैं आज भी कर रही हो यही रमण, आपके स्नेह और पालना को शत शत नमन, शत शत नमन।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: विश्व परिवर्तन करना है ना, तो क्या याद रखेंगे? याद रखा मानस से, शब्द याद रखो बस, क्योंकि आपके चरचित्र क्या देते हैं, दुआ देते हैं ना, मंदिर पे जाते हैं तो क्या मांगते हैं, दुआ मांगते हैं ना,
4: जन्म में भी

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आज बाप दादा खजानों के मालिक बच्चों के समान

0: सदा करते चलो। इतने अटेंशन से अलबेले रूप से
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Steve.

सोचते हैं।

7 मुक्ति का वरसात लाएंगे, वो कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ, उस कार्य को समाप्त करने में समय लगाना, अगर माया को भगाने में समय लगाएंगे तो विश्व परिवर्तक का जो वायदा है वो पूरा कैसे।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: मन बुद्धि संस्कार तीनों के मालिक बन आर्डर करो स्वीट साइलेंस तो अनुभव करो आर्डर करने से अधिकारी बनने से स्थित हो जाओ।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: जिसको भी जो देखे ना, ऐसे लगे ये कौन मेरे सामने आ गए। देख देख के खुश होता नहीं।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Yes.

kill kebab. Sedap Fitri. Hey Fitri Swaru. Pernah nih berta Swaru bi Fitri tak. Tuh lagi. Fisis aja. तो क्यों आप डबल पवित्र इतने महान बने हैं? क्यों आपको रंग कौन सा लगा? परमात्मा के संग का रंग तो जैसे परम आत्मा पवित्र होली का दूसरा अर्थ है होली हो गया जो पीता सो पीता होली तो होली करना आता है जो हो चुका वो हो चुका।
इससे आप डबल होली 21 जन्म रहते हो, एक जन्म नहीं, क्योंकि संगम के एक एक सेकंड का कनेक्शन 21 जन्मों का है। यहां आपने अगर एक सेकंड या एक मिनट सफल किया तो 21 जन्म आपका सफल रहेगा। गारंटी ऐसी होली मनाई है। होली करना आता है, जो बीता वो बीत गया। होली और तीसरे रूपरेखा क्या करते हैं, पहले जलाते हैं फिर मना।

0: चले हैं ना, चले हैं कि अभी भी जला रही है।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा, अभी समय के समीपता अनुसार हर एक जो भी बाप के स्थान है, चाहे गांव में है चाहे बड़े सोन में है, सेंटर्स पर है, लेकिन हर एक स्थान और साथियों में श्रेष्ठ वृत्ति का वायुमंडल आवश्यक।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: Simple.

0: नमस्ते, मेरा प्यार बाप से ज्यादा है कि दूसरे का प्यार ज्यादा है, मेरा कम है, ऐसे समझते हैं? हर एक यही कहता है ना, मेरा प्यार है, मेरा प्यार है।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा ने पहले भी

0: उसने वारी आए तो खुश खबरी सुनेंगे ना। सुनेंगे इसमें याद रहो। अपने नजदीक वाले साथियों को छोटा सा काम देती है, सभी को नहीं कहती।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: कभी भी कमजोरी आ जाए, आने नहीं देना। गेट बंद, गेट तो पता है ना, बंद करो, डबल बंद, डबल ताला लगाना। आजकल सिंगल ताला नहीं चलता। एक याद का, एक मन को सेवा में बिजी रखने का, ये तो अलमेटी ताले लगा देना। गाडरेज का नहीं गाट का।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

cine.

immortal.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

Bob.

救过。

So.

Bye.

coucher.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: झमेला मुक्त होने की विधि सबसे सहज है कि पहले स्वयं को झमेले मुक्त कर, दूसरे के पीछे नहीं पड़ो। ये स्टूडेंट ऐसा है, ये साथी ऐसा है, ये सरकमस्टेंस ऐसी है, उसको नहीं देखो लेकिन अपने को झमेला मुक्त करो। जहाँ झमेला होना वहाँ अपने मन को दिन को किनारे कर। आप सोचते हो ये झमेला पूरा होगा ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा, हमारी सेवा भी अच्छी, हमारी अवस्था भी अच्छी। लेकिन झमेले बाहर के समान है, क्या बाहर से मात्र टकराना है? स्वयं किनारा कर लो या उड़ती कला से उस झमेले के बाहर के भी ऊपर चल तो बाहर भी आपको एकदम सहज अनुभव। मुझे बनना है अमृत वेले से, ये स्वयं से संकल्प करो कि मुझे झमेला मुक्त बनना है। बाकी है झमेले मुक्त

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: Spirito.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो।
0: शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

Creepy Dog 70.

Ich Abgehen. Kuschel.

ちゃん。

Esa vez.

तो क्या कहते हैं खुश रहो आबाद

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: अच्छा वैज्ञानिक, बहुत अच्छा अनुभव है। जैसे साइंस महीना होती जाती है, दिन प्रतिदिन साइंस महीन होती जाती। ऐसे आप साइलेंस और साइंस दोनों के अनुभवी हो, तो अपने हम जिन्स को साइलेंस का महत्व सुनाओ, उनका भी कल्याण करो। कल्याण करना आता है ना को, साइलेंस भी एक विज्ञान है। साइलेंस का विज्ञान क्या है उसकी पहचान दो। साइलेंस के विज्ञान से क्या क्या होता है तो साइंस भी ज्यादा रिफाइन कर सके, क्योंकि हमारी नई दुनिया में भी विज्ञान तो काम में आएगा ना, बिजनेस भी होगा, लेकिन रिफाइंड रूप में होगा। अभी का विज्ञान की इन्वेंशन फायदा भी है नुकसान भी है, लेकिन नई दुनिया में रिफाइंड विज्ञान होने के कारण नुकसान का नाम निशान है। ऐसे जो बड़े बड़े विज्ञानी है उनको ज्ञान दो साइलेंस का, तो फिर अपने नई दुनिया में रिफाइंड विज्ञान करने में मददगार बनेंगे। तैयार करो इंजीनियर्स को, चलो पूरा ज्ञान नहीं लेवे लेकिन रेगुलर नहीं बनेंगे, लेकिन बाप को तो पहचाने। कई ऐसी आत्माएं हैं जो रेगुलर नहीं बनती है, लेकिन निश्चय और खुशी में रहती, संबंध में सहयोगी रहते। ऐसी आत्माएं भी तैयार करो।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

किसी भी परिस्थिति में स्वास्थ्य

ये होमवर्क देते चेता कि ये तो मास हर एक बच्चा मन के व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ समय के बचत का अपने प्रत विधि बनावे। इन दो मास में हर एक अपना चार्ट रखे, व्यर्थ समय व्यर्थ संकल्प के ऊपर कितना कंट्रोल किया, क्योंकि अभी समय के प्रमाण आप सभी को मनसा शक्ति द्वारा आत्माओं की मनसा सेवा करने का समय होगा। इसके लिए

मन के ऊपर अटेंशन रखना जरूरी का हुआ भी है। मन जीत जगत जीत, तो मन मना भव के वायुमंडल में मन के व्यर्थ को संपन्न करना है। कर सकते हैं, करेंगे वो हाथ उठाओ, बाप दादा इनाम देंगे। अपने रिजल्ट आप देखना, मन खुश

0: संकल्प समय दोनों समाप्त, और समरथ संकल्प समरथ समय आने वाले समय में वायुमंडल में फैलेगा।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

Damn it.

里。See?

Yeah, that's...

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: But sir.

करता रहता हूं।

见。

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: शिव के ऊपर अक के फूली चढ़ते तो आज शिवरात्रि मना रहे हो, शिव का जन्मदिन मना रहे तो ये क्रोध का अक का फूल देख रही है दादी।

0: हिम्मत हिम्मत कभी नहीं हार। अगर थोड़ा भी कम हुआ तो आगे के लिए हिम्मत रख के छोड़ नहीं देना, पढ़ते रहना। बाप दादा कंबाइंड है कहते हो ना, साथ है नहीं कहते हो कंबाइंड। ऐसे समय पर अगर कुछ भी हो, बाप दादा कंबाइंड है, उसको सामने लाके फिरार पर कर दो। लेकिन बाप दादा चाहते हैं कि सभी बच्चे नंबर वन हो। दी हुई चीज अमानत हो गई। हाथ उठाया अर्थात दिया तो अभी आपका नहीं हुआ, अमानत है। तो अगर संकल्प में भी आए तो समझना अमानत में ख्यानत है, ये बुरा माना जाता है। दी हुई चीज कभी वापस नहीं ली जाती, क्योंकि मेरी नहीं।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: फरिश्ता स्वरूप में रहना है, इसको ही कहा जाता है दीवर पुरुषन।
4: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: दुआएं लेते जाओ, दुआएं देते जाओ, संपन्न हो जाएंगे। कोई पत दुआ देवे तो क्या करेंगे, लेके आपको देता है तो आप क्या करेंगे, लेके अगर बद्दुआ मानो ले लिया तो आपके अंदर स्वच्छता रही। बद्दुआ तो खराब चीज है ना, देने वाला भी होता है लेकिन लेने वाला ज्यादा होता है, देने वाला तो अलबेला होता है।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: साइलेंस की शक्ति से दूर बैठे योग भी दे सकते हो। सकाश दे सकते

साइलेंस की शक्ति की सकाशता

इस साइलेंस के सेवा का सहयोग देना पड़ेगा। सरकमस्टेंस अनुसार से भी लोग भी कहते हैं जो करना है वो आप कर लो, जो सोचना है आप सोच लो। Sí.

साइलेंस की शक्ति। एक सेकंड में कुछ भी हो, साइलेंस में कुछ।

0: शरारत कर रही है। जमा का शरारत आप ही कर सकते।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

Yeah.

for me.

रूहानी राय।

personality. Snap.

就不见去德拉巴那的。Yo te digo.

Sim.

0: सारे क्लब में ये रूहानी रियलिटी चलती रही है।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Yeah.

ब्रह्मा

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: यज्ञ में हर एक का पाठ अपना अपना आवश्यक है। कोई भी एक्टर निमित सेवादारी अगर मिस होते हैं तो ऐसे नहीं मालूम नहीं पड़ता है। हर एक का पाठ अपना अपना महत्व है। कोई का भी पाठ अगर मिस हो जाता है तो फर्क पड़ता है। ये पाप का वरदान एक एक कामन पाठ दाढ़ी को भी जैसे भंडारी वाले है तो कामन पाठ, लेकिन भंडारी वाला नहीं हो तो काम नहीं चले। सफाई वाला नहीं हो तो भी काम नहीं चले। और क्लास कराने वाला नहीं हो तो भी काम। हर एक एक्टर को ड्रामा अनुसार जो पार्ट मिला हुआ है उसको समझना चाहिए कि मैं भी विशेष निमित्त हूं। ड्रामा ने हर एक को चाहे छोटा सा कार्य लेकिन वो भी जरूरी है। पांच अंगुलियां है, एक अंगुली भी मिस हो जाए तो फर्क पड़ेगा। तो यज्ञ की यही विशेषता है, जो भी जिसको पाठ मिला है ना वो बहुत बहुत बहुत जरूरी।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: विश्व को लाइट दे सकते।

second me. Sabi. Ciao.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: 起来了。
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Oh.

las han hecho por puro 10.

0: कोई मांगे नहीं मांगे। लेकिन दादा कभी ये नहीं देखता, ये
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: हिम्मत सदा कायम है, क्योंकि हिम्मत दे बच्चे

क्या समझते हो व्यर्थ संकल्प का? जो हिम्मत रख बाप के आगे संकल्प संकल्पों में समय पहुंचाना

विश्वास।

0: desde nega.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Oh।

नहीं धारण करता तो आप इतनी अंत में यहां पहुंच नहीं पाते क्यों? के वायुमंडल की प्रांतिया इस विश्व क्रांति के कार्य को हल्का कर रही थी तो ब्रह्मा बाप का फरिश्ता बनना आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों अभी फरिश्ते रूप में जो सेवा की फास्ट गति है वो देख रहे हो ना, देख रहे हो फास्ट गति हुई है या कम हुई है? फास्ट हुई है ना, तो फास्ट हुई तभी

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अभी सर्वात्माओं को आपके सहयोग की बहुत बहुत आवश्यकता है, तो सहयोग दो और सहयोगी बनाओ। कोई ना कोई सहयोग, चाहे मनसा का, चाहे बोल से कोई सहयोग दो, चाहे समन संपर्क से सहयोग दो। तो इस शिवरात्रि जन्म उत्सव विशेष स्लोगन याद रखो, सहयोग दो और सहयोगी बनाओ। कम से कम जो भी आवे संपर्क में, संबंध में भी, कोई ना कोई तो संबंध में आता ही है, उसको और कोई खातरी नहीं करो, लेकिन हर एक को दिल खुश मिठाई जरूर खिलाओ। ये जो यहां भंडारे में बनती है वो नहीं, खुश कर दो तो दिल खुश करना अर्थात दिल खुश मिठाई खिलाना। खिलाएंगे उसमें तो कोई मेहनत नहीं है, ना टाइम एक्स्ट्रा देना है, ना मेहनत है। शुभ भावना से दिल खुश मिठाई खिलाओ, आप भी खुश, वो भी खुश, और क्या चाहिए। तो खुश रहेंगे और खुशी देंगे।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: अगर पापा शब्द नहीं निकलता तो ज्ञान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: पीसे करके देखो, आप कहेंगे हम बहुत बिजी रहते अगर समझते हो प्यास लगी है तो पानी पीना जरूरी है। ऐसे बीच बीच में अशरी स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास भी जरूरी, क्योंकि आने वाले समय में चारों ओर की हलचल में अचल स्थित से बहुत काल का अभ्यास नहीं करेंगे। तो अति हलचल समय अचल कैसे रहेंगे? एक दो मिनट निकाल के भी चेक करो, किस समय परमान आत्मा की स्थिति द्वारा इस अभ्यास को चेक करने से, रिवाइज करने से नेचुरल स्थिति बन जाए।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Jesse Saints. Suck.

Chador. Fellow. जवाब की प्रकृति सूर्य की शक्ति सूर्य की किरणाएं से रात रात से दिन करके दिखाते तो क्या आप अपने फैला सकते।

स्वरूप को इमर्ज करो, किरणें फैलाओ, सकाश फैलाओ, जैसे

c'est affreux.

0: जाओ, जब तक जाओ तब तक मन को एकाग्र कर सको।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कहीं कहते हैं कि योग क्या बस बहुत अच्छा लगता है, बस अच्छा है, ज्ञान अच्छे है, कहेंगे ज्ञान यूज करते हो अच्छा है वो तो ठीक है, लेकिन कर्म मिलाते हो ज्ञान माना आत्मा परमात्मा ड्रामा कहना नहीं, ज्ञान का अर्थ है समझ, समझता जैसा समय होता है वैसे समझदारी से सदा सफल होता है। समझदार की निशानी है कभी धोखा नहीं खाना, ये ज्ञान की निशानी और योगी निशानी है कि सदा क्लीन और क्लियर बुद्धि, क्लीन भी हो और क्लियर भी हो, योगी कभी नहीं कहेगा पता नहीं पता नहीं, उनकी बुद्धि सदा क्लियर और धारणा स्वरूप की निशानी है, सदा स्वयं लाइट, कितने भी जिम्मेवारी हो लेकिन धारणा मुहूर्त सदा डबल लाइट, चाहे मेला हो चाहे जमेला दोनों में डबल लाइट और सेवादारी की निशानी है सदा निमित्त और निर्माण भाव। तो ये सभी अपने में चेक करो, कहने में तो सभी कहते हो कि चार सब्जेक्ट के काटली स्टूडेंट है ना, तो निशानी दिखाई देनी चाहिए।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

शरद में थकना नहीं, कोई भी छोटी मोटी बाधा आती है मदद लो। उसका

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

बच्चों के लिए प्रॉपर्टी,

0: claro, porque sí, yo sé.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम

Desisto.

Masters.

sasevako.

Combátelo. O mancuzzatelo. Babka varsa muk isi baton se muk.

सीन को

0: साइटसीइंग देखने के लिए साकी दृष्टा की सीट पर सेट रहो बस।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम,
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

Ich zoppi.

Yoga, aber gesoffen.

सफलता

सभ्या तुम्हें पूरा समय स्वस्थ रहते, बीमारी का नाम नहीं, डॉक्टर्स की डिपार्टमेंट ही नहीं, क्योंकि डॉक्टर्स क्या बन जाएंगे, राजा बन जाएंगे ना, विश्व के मालिक बन जाएंगे, लेकिन इस समय आप श्वास सफल करते हो और सर्वात्माओं को स्वस्थ रहने समझदार

Abşık.

इस

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: समय पर परिवर्तन शक्ति को यूज करके देखो, पीछे आता है, जब बीत जाता है और मन को अच्छा नहीं
0: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

बच्चों को याद करते हैं, ऐसे नहीं है। कि बच्चे भूल गए हैं, नहीं, एक एक बच्चा

있으

Έλα, Νίκα. Ρόγκο, πιτσιάρισμα.

0: अभी ऐसा समय आने वाला है जो इंद्रों को याद करेंगे, इसलिए आप अपना कार्य करते रहो। वो बेचारे आप लोग तो भाग्यवान है, अपना भाग्य प्राप्त हुआ उसको अव्यक्त होते हुए भी बच्चों ने पहचाना और सेवा का भाग्य भी लिया।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: Yes.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Sabika. Chuti. Pinduro. Akaya apke sam. Sleep.

치.

strong.

seruan.

Father 6, Xerirco, d'on tres tractia. Ese. Ye exercer.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा ने देखा कि तनाव में आने का कारण थे अपमान का मैं शब्द, थे पान का मैं एक है, मैं आत्मा हूँ ये मैं, लेकिन
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आप अपने विशेषताओं को जानते हो? जानते हो? हर एक अपने विशेषता को जानते हो? जानते हैं? सेवा में लगा

0: ब्राह्मण जीवन में आने के बाद पाप द्वारा विशेषताएं बहुत प्राप्त होती है, क्योंकि पाप का बनने से
1: संपूर्ण निर्विकारी, लेकिन

watch this scene.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सीट पर सीट

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: बस माताओं के लिए बाप आए अच्छा खुश हो रहे सदा खुश रहना ऐसे नहीं अभी हाथ उठा रहे हैं और ट्रेन में जाओ तो थोड़ा थोड़ा नशा उतरता जाए सदा एक का रस अविनाशी नशा हो कभी कभी का नशा नहीं सदा का नशा सदा ही खुशी प्रदान करता है आप माताओं के सदा चेहरे ऐसे होने चाहिए जो दूर से
1: सुन रहे हैं शिवा रेडियो शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: कोई भी बात आवे, दीपक जगे हुए दीपक के सामने आवे तो दीप जग जाए। ऐसा भी समय आएगा जो आपके सामने आने से आपका दिव्य स्वरूप देखने में आवे, साकार साधारण स्वरूप गायब हो जाए। जैसे बाप दादा के सामने आते हो तो बाप ऐसा समय उस रूप में देते, ऐसे

0: धारण रूप में, देवता रूप में या देवी के रूप में दिखाई दे। अभी भी कोई कोई बच्चों से ये प्रैक्टिकल बस
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा ने पहले भी सुना है, अगर दिल में कोई पुराने संस्कार के रूप में रह गई है, तो रावण की चीज वराई चीज हो गई ना।
2: जिसको

eso te viera. So

சிவன் பிஎக் டிக்ஷனரி அபி கப்பி ஸ்வபன் மேம்.

0: Санкалапка. Апанесе.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

você.

show.

zarur kalau.

Tinder.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कल से नहीं, आज से, अभी से, सारे दिन में दोनों भाव से प्यार, तो कभी अपने को निराकार भाव समान, निराकारी स्थिति में अभ्यास करो। फॉलो फादर, और कभी फरिश्ता बनकर साकार रूप भ्रमण नहीं, भ्रमण तो हो ही, लेकिन फरिश्ता रूप बन कर्म भले करो, लेकिन कर्म करते भी फरिश्ता स्थिति में रहो, तो कर्म का बोझ प्रभाव नहीं डालेंगे। ब्रह्मा बाप से प्यार है, तो ब्रह्मा बाप ने कर्म सब किया, निमित्त बना, लेकिन कितना बोझ था ब्रह्मा बाप के ऊपर। आप कोई के ऊपर इतना बोझ नहीं है, है कोई ब्रह्मा बाप से ज्यादा किसके ऊपर बोझ है, जिम्मेवारी है, वो हाथ उठाओ। कोई नहीं उठाता, कोई नहीं उठाता। तो ब्रह्मा बाप ने इतनी जिम्मेवारी निभाते हुए कार्य में कैसे रहा, कर्म में भी फरिश्ता रूप रहा ना, तो आपका भी ब्रह्मा बाप से प्यार है, तो कभी फरिश्ता रूप में रहो, कभी निराकार स्थिति में रहो। ये प्रैक्टिस ब्रह्मा बाबा कह के ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बन जाओ, और शिव निराकार बाप को याद कर निराकारी स्थिति में स्थित हो जाओ। ये कर सकते हो, कर सकते हो कि मुश्किल है, जो कर सकते हैं बीच बीच में, बीच बीच में ऐसी करें जो लगातार हो जाए। ये अपने कर्म के हिसाब से जो आपकी दिनचर्या है उसके हिसाब से फिक्स करो। कम से कम सारे दिन में 12 वाड़ी फरिश्ता बनो, 12 बारी निराकार स्थिति में स्थित रहो। ये कर सकते हो, हाथ उठाओ, कर सकते हो, मुश्किल नहीं है ना, नहीं, सहज है ना, सहज है, सहज में हाथ उठाओ, सहज है। अच्छा, करना है, करना है, ये पक्का करो, फिर तो जो लक्ष्य रखा है ना इस सीजन के अंत तक परिवर्तन हो सकता है। अगर ये ड्रिल 24 टाइम करेंगे तो लगातार हो जाएगा, ठीक है ना? हो सकता है, हो सकता है, हाथ उठाओ, हो सकता है, हो सकता है।

तो देंगे ना, आपको जीवन मुक्ति का वरदान देंगे। लेकिन सभी बच्चे तो है ना, उनको भी वर्षा तो देना है ना। उन्हों का वर्षा है मुक्ति, आपका वर्षा है जीवन मुक्ति। जब तक मुक्ति नहीं देंगे तो आप भी जा नहीं सकते। इसके लिए ये ड्रिल करो, 24 वाली, 24 घंटे है, रात और दिन के 24 घंटे है, और 24 बार करना। नींद के टाइम नींद भले करो, बाप दादा ये नहीं।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सभी बच्चों को सदा निर्विघ्न स्वरूप में देखने चाहिए, क्यों जब आप निमित्त बने हुए निर्विघ्न स्थिति में स्थित रहो, तब विश्व की आत्माओं को सर्व समस्याओं से

Shavabhavna, Shavakamna, Parivartan ki Shresht Bhavna. Unke sanskar ko, thodi samay ke liye परिवर्तन कर सकती आत्मक भाव इमर्ज करो जैसे शुरू शुरू में देखा some

स्टार्ट में हूँ। देवात्माओं के सबसे में श्रेष्ठ आत्मा

você. Saman sambarak meu. Sí, Beata.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बेफिक्र बच्चा का ये अर्थ नहीं कि अलबेले रहे हो, अलबेला पन और के हम तो बेफिक्र रहते हैं। अलबेला पन
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।